0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बार एक बार लेकिन एक बार

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: मैजिक रेडियो DS89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस
2: बस मधुरांची
3: है, यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो DS
2: पसंद रांची है गाना
3: यहां हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो DS
2: पसंद रांची है गाना,
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो DS
2: रेडियो
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डी एस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो
2: डी
3: एस। यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डी एस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस रेडियो डीएस
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

कैसे कैसे कंपनीज बना लेते हैं यार लोग। ट्यून इन कर रखा आपने 89.6 रेडियो डीएस, और एक फ्रेंच कंपनी है जिसका नाम है अल्टीमेट रियलिटी, जो आपको किडनैप करने के आपसे पैसे लेंगे। यानी अगर आप चाहते हो कि लाइफ में एक बार किडनैपिंग वाला फील एक्सपीरियंस करो, तो आप उन्हें पैसे दे के भूल जाओ, और वो कभी भी आपको उस दिन से लेकर अगले एक साल के बीच कभी भी किडनैप कर सकते हो। और फिर इस वक्त अगर आप गाड़ी चला रहे हो और आपको कोई है, आपने ऐसा किया था, मुझे पता नहीं, पर फिलहाल अमेजिंग गाने सुनो 89.6 रेडियो डीएस पे।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: यूजुअली क्या काऊ ऐसे साउंड करते हैं, मो ट्यून इन कर रखा आपने 89.6 रेडियो डीएस। और बेल्जियम के साइंटिस्टों ने एक ऐसा काऊ बनाया है जो नॉर्मल काऊ से 6 गुना ज्यादा दूध देगी। व्हाट एन अमेजिंग गाय। पर ये गाय जो है, इसे हम गौशाला में नहीं प्रयोगशाला में रख सकते हैं। पर फिलहाल आपको हम कहीं भ्रम में नहीं रखना चाहते, सिर्फ गाने सुनाना चाहते 89.6 रेडियो डीएसपी।

0: हर बीट में है शहर का कमाल। DS89.6 शहर की धुन।
1: ठंड के समय अगर हमारे पास ये शक्तियां नहीं होती तो हे भगवान हम कैसे जिंदा रहते। ट्यून इन कर रखा आपने 89.6 रेडियो डीएस और आज का शो यही तक था। फिलहाल टाइम टू गो, लेकिन जाने से पहले सोचो कि ठंड बहुत ही भयंकर है, दोनों नाक हमारे बंद हो गए, फिर ऑप्शन क्या है? हम मुंह से सांस लेते हैं, लेकिन घोड़ों के पास ये ऑप्शन नहीं है। घोड़े यानी कि हॉर्सेस, वो सिर्फ अपने नाक से सांस ले सकते हैं, उनके मुंह से वो सांस बिल्कुल नहीं ले सकते। तो अगली बार नहीं, अभी गाने सुनो 89.6 रेडियो डीएसपी।

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS89.6 शहर की धुन
1: 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ सफरनामे में हम जिस अभिनेत्री की बात करने जा रहे हैं उनके लिए बोलना चाहूंगी शोहरतों का ताज पहनकर जिन्होंने अपनी सीमाओं को कभी लांघा नहीं जी हाँ बीते वक्त की एक मशहूर अदाकारा एक ऐसी लड़की जो परंपरागत परिवार से थी माता पिता के दिए गए संस्कार उनकी रूह में समाये हुए थे यही वजह थी कि एक सफल अभिनेत्री होने के बावजूद न तो किसी फिल्मी गॉसिप में शामिल हुई न ही ग्लैमर को उन्होंने खुद पर हावी होने दिया उनका नाम है बीना रॉय उनकी पहली फिल्म थी काली घटा जो बनी थी सन 1951 में 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS89.6 शहर की धुन
1: 89.6 DSFM पे मैं तनिषा आपके साथ। गाली घटा फिल्म के फिल्मकार का नाम था किशोर साहू और किशोर साहू जी ने ही बीना रॉय की प्रतिभा और सौंदर्य को निखारा और यही नहीं उन्हें बीना रॉय नाम भी दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि बीना रॉय का असली नाम क्या था। उनका असली नाम था कृष्ण शरीर। फिल्म काली घटा के बाद फिल्मिस्तान के बैनर पर बीना रॉय और प्रदीप कुमार को लेकर बनी फिल्म अनारकली से वो एक स्टार बन गई। अनारकली ने कामयाबी के नए कीर्तिमान बनाए। फिल्मिस्तान की म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर अनारकली के टाइटल रोल में जिस किसी ने भी बीना रॉय को देखा वो सभी बीना रॉय के दीवाने हो गए। 89.6 DSFM पे मैं तनिषा आपके साथ।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनिषा आपके साथ। अपनी नशीली अदाओं से बीना रॉय ने सभी को दीवाना बना दिया। सन 1953 में उनकी दो और फिल्में रिलीज हुई थी, औरत और शोले। फिल्म औरत के निर्माता थे भगवान दास वर्मा और बीना रॉय के साथ ही कलाकार थे प्रेमनाथ। प्रेमनाथ के साथ बीना रॉय की ये पहली फिल्म थी जिसकी शूटिंग के दौरान दोनों के बीच प्यार हुआ और उस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही दोनों 1952 में विवाह सूत्र में बंध गए। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनिषा आपके साथ।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ। सन 1955 में उनके द्वारा अभिनीत फिल्म जैसे इंसानियत, मरीन ड्राइव, मत भरे नैन जैसी फिल्मों में उनके अभिनय की काफी सराहना की गई। अपने पति प्रेमनाथ के साथ उन्होंने 1953 में शगुफा, 1954 में गोलकुंडा का कैदी और 1957 में समुद्र जैसी फिल्मों का निर्माण भी किया और सन 1960 में आई फिल्म घूंघट के लिए बीना रॉय की अदाकारी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार हासिल करने में भी कामयाब रही। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा।

0: का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: डीएसएफएम पे मैं तनिषा आपके साथ। हम बीना रॉय के बारे में बात कर रहे थे, उनकी फिल्म सरदार, हमारा वतन, हिल स्टेशन, वल्ला क्या बात है और भी कई फिल्मों में उनके अभिनय की तारीफ की गई। उन्होंने अपने दौर के सभी जाने माने नायकों के साथ काम किया, जैसे भरत भूषण, अशोक कुमार, प्रदीप कुमार और शमी कपूर। बीना रॉय ने रोल भी काफी दमदार किए हैं, जैसे 1963 में ताजमहल में उन्होंने मुमताज का रोल अदा किया। 89.6 DSFM पे मैं तनिषा आपके साथ।
2: 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनिषा आपके साथ। 17 साल के फिल्मी करियर में उन्होंने सिर्फ 28 फिल्मों में काम किया। कहा जाता है कि घर गृहस्थी संभालने के साथ साथ अभिनय की दुनिया भी पकड़े रहने का मुख्य कारण था उनकी आर्थिक स्थिति। लेकिन सन 1966 में तीसरी मंजिल से प्रेमनाथ जी के स्टार बनते ही उन्होंने फिल्मी पर्दे से अलविदा कह दिया और विजय भट्ट की राम राज जो 1967 को रिलीज हुई वो उनकी आखिरी फिल्म थी, जिसके बाद वो पूरी तरह से घर गृहस्थी में रह गई। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनिषा।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनिषा आपके साथ। बीना रॉय हिंदी सिनेमा की सबसे बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक थी, जिन्होंने अपने जबरदस्त अंदाज से लाखों के दिल जीते। आज सफरनामे में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनिषा आपके साथ।

इंसानों का कुछ समझ नहीं आता भैया, ऐसी शर्तें लगाते क्यों? ट्यून इन कर रखा आपने 89.6 रेडियो डीएस, और शर्त के मामले में हमने काफी किस्से सुने महाभारत के, रामायण के, पर एक शख्स को भैया अभी हाल फिलहाल में अपना नाम बदलना पड़ गया क्योंकि वो बैट हार गया, वो शर्त हार गया। अब अगर आप मुझसे पूछोगे यार नाम के मामले में मेरा नाम क्या है, नहीं बता सकता क्योंकि शर्त लगी हुई, मैं बता ही नहीं सकता, मैं सिर्फ सुना सकता हूँ, वो भी अमेजिंग गाने 89.6 रेडियो डीएस पे।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: मूंगफलिया, वो भी छिलके वाली, खा के मजा आता है ना। ट्यून इन कर रखा आपने 89.6 रेडियो डीएस पे। और जो मूंगफलिया, जिसको कई लोग बादाम भी कहते हैं, कच्चा बादाम, दादा कच्चा बादाम, उसे खाने में बड़ा मजा आता है, खासकर विंटर्स के दौरान। लेकिन आपको नहीं पता था कि मूंगफलिया यूज की जाती है डायनामाइट्स बनाने में। हाय हाय हाय हाय, शायद आपको नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था, पर जब से मैंने ये सुना है, मैंने और मूंगफलियां खाना चालू कर दिया। क्यों कर दिया मैं नहीं बताऊंगा, पर सुनाऊंगा फिलहाल अमेजिंग गाने 89.6 रेडियो डीएस पे।

0: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।
1: मैं कह रहा हूँ कि अगर आप अपने गाड़ी की साफ सफाई नहीं करोगे तो फिर मैं फाइन काट लूंगा। ट्यून इन कर रखा आपने 89.6 रेडियो डीएस, और शुक्र मनाओ कि हिंदुस्तान में हो, रशिया में नहीं। क्योंकि रशिया में अगर आप गंदे गाड़ी ड्राइव करते हो, आपके गाड़ी के ड्राइवर्स लाइसेंस प्लेट पे या शीशे पे या दीवारों पे, दीवार नहीं होते यार, गेट्स होते हैं, उनमें अगर थोड़ी भी धूल वूल है तो आपका फाइन लग सकता है, आप पे फाइन काट दिया जाएगा। अब इस इंफॉर्मेशन का आप कहाँ यूज करोगे? अपने लाइफ में अपने गाड़ियों को रोज साफ करोगे। और फिलहाल गाने सुनो 89.6 रेडियो डीएस पे।

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS89.6 शहर की धुन
1: 89.6 DSFM पे मैं तनिषा आपके साथ स्वागत है आपका आपके फेवरेट शो सफरनामे में। सवेरे सवेरे हो खुशियों का मेला, ना लोगों की परवाह न दुनिया का झमेला, पंछियों का संगीत हो और मौसम अलबेला, मुबारक हो आपको ये खूबसूरत सवेरा। और इस खूबसूरत सवेरे की खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी जब आप सुनेंगे आज के फनकार की गायकी को। आज के फनकार हैं जाने माने गायक येसुदास। 89.6 DSFM पे मैं तनिषा आपके साथ।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ। येसुदास, जिन्होंने अपनी गायकी में जिंदगी के हर रंग को बखूबी साकार किया, सन 1975 में आई फिल्म छोटी सी बात का जाने मन गीत आपको याद ही होगा। अमोल पालेकर और विद्या सिन्हा पर फिल्माई गई इस फिल्म को येसुदास ने और आशा भोसले ने अपनी आवाज में सजाया था। गीतकार योगेश, संगीतकार सलिल चौधरी ने संगीत से इस गाने को बखूबी सजाया। पेश है ये गाना आपके लिए 89.6 डीएसएफएम पे, मैं तनीषा आपके साथ।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: 89.6 डी एस एफ एम पे मैं तनिषा आपके साथ। आज भी जब हम किसी गांव की गोरी को देखते हैं तो हमारा मन गुनगुना ही उठता है, गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा। चित्चोर फिल्म का ये गाना अमोल पालेकर और जरीना वहाब पर फिल्माया गया है। माथे पर बिंदिया और ब्लैक एंड व्हाइट साड़ी में चलती है तो उनके पीछे पीछे अमोल पालेकर इस गाने को गुनगुनाते हुए चलते हैं। 89.6 डी एस एफ एम पे मैं तनिषा आपके साथ।

0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनिषा आपके साथ। यशुदास जी ने जहाँ गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा जैसे बोलों में अपनी आवाज दी है, वहीं उन्होंने विरह के गीत भी बड़ी ही सच्चता से गाए हैं। अब जो गाना हम आपको बताने जा रहे हैं, उस गाने का मुखड़ा बड़े गुलाम अली की प्रसिद्ध ठुमरी से लिया गया है। क्या करूं सच नहीं आए न बालम विरह की भावना से भराएगा, यशुदास जी ने भावपूर्ण अंदाज में गाया है। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनिषा आपके साथ।

0: नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: डीएसएफएम पे मैं तनिषा आपके साथ। त्रिशूल फिल्म रिलीज हुई थी सन 1978 में और इस फिल्म में हेमा जी के लिए लता जी की आवाज, शशि जी के लिए किशोर दा की आवाज और हमारे सुपर डुपर अमिताभ जी के लिए थी सुभाष जी की आवाज। आज भी जब हम इस गाने को सुनते हैं, खास करके अमिताभ जी पर फिल्माए गए गाने की ये लाइनें कि किताबों में छपते हैं चाहत के किस्से, जवाब सीधा दिल में उतर आता है, यकीन नहीं होता ना। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनिषा आपके साथ।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनिषा आपके साथ लता जी मोहम्मद रफी साहब किशोर दा के सुरीले दौर में भी अपनी आवाज से संगीत प्रेमियों के दिल में खास जगह बनाने वाले यसुदास जी के गीतों की खुशबू आज भी महसूस की जा सकती है। सफरनामे में आज इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और सुनते रहिएगा गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन 89.6 डीएसएफएम में तनिषा आपके साथ।

0: रुको नहीं बेटी, नाचो नाचो।
1: नीर भरत जमुना तट पर जब भर भर नीर उठाई गगर, तब डगर चलत मोह छेड़त लंगर, हट जाओ जी कुंवर फुट जात गगर मोह छोड़।

0: कदर करो, कदर जब तक है तब तक कदर करो, वरना 89.6 रेडियो डीएस ट्यून इन कर रखा है आपने, और हमारे धरती का, हमारे पृथ्वी का 71% हिस्सा क्या आपको पता है, पानी है। यहाँ तक कि हमारे इंसान के शरीर का 75% से भी ज्यादा हिस्सा पानी का होता है। और इंटरनेट पे तो वैसे भी लोग राजस्थान को मानते पानी से वंचित प्रदेश, लेकिन मैं नहीं मानता यार, हमारे पास बहुत पानी है, और खासकर विंटर्स के दौरान भैया हमसे ज्यादा पानी, खासकर गंगापुर सिटी से ज्यादा पानी कोई नहीं बचाता, क्योंकि हम नहाते ही नहीं, पर गाने बहुत सुनते हैं क्योंकि हम ट्यून इन करके रखते हैं पूरे दिन 89.6 रेडियो डीएस।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।

0: ऐसी चढ़ गई।
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाने चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और तीन बजाती हुई

0: तभी मैं सोचूं कि इनका रंग ऑरेंज क्यों नजर आता है। ट्यून इन कर रखा आपने 89.6 रेडियो डीएस। और डॉक्टर्स के मुताबिक अगर आप ज्यादा कैरेट या फिर गाजर खाओगे तो आपके शरीर का, आपके स्किन का रंग ऑरेंज हो जाएगा। तभी मैं सोचूं कि यूएस के जो एक्स प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो ऑरेंज क्यों दिखते हैं, पर उसे हमें क्या, हमें दिखने से नहीं हमें सुनने से फर्क पड़ता है। और सुनेंगे वही अमेजिंग गाने रेडियो डीएस 89.6 पे,
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

देखो देखो देखो देखो, नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो सुनो, आप ऐसी चीजें बिल्कुल मत करना। ट्यून इन कर रखा आपने 89.6 रेडियो डीएस और जाने का समय हो गया फिलहाल, टाइम टू गो, कल मिलेंगे। लेकिन जाने से पहले अगर आपने कभी एयरपोर्ट से ट्रेवल किया तो आपको पता है कि अगर एक्स्ट्रा लगेज ले जाओगे तो आपको फिर पैपे यानी कि पैसे देने पड़ेंगे। पर एक बार क्या हुआ, इन शख्स ने भैया एक्स्ट्रा पैसे देने से बचने के लिए 60-60 शर्ट्स पहन लिए और 9 जीन्स एक के ऊपर एक पहन लिए ताकि एक्स्ट्रा पैसे ना देने पड़े। अब इस चीज का आप कैसे वाइजली यूज करोगे मुझे नहीं पता, पर फिलहाल गाने सुनो, अपने मन को रिलैक्स करो 89.6 रेडियो डीएस पे। 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: चलते हैं।
1: 89.6 पे रेडियो डीएस,
2: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनिषा आपके साथ। सफरनामे में आपका स्वागत है। रफी साहब का सबसे प्रिय शौक था पतंग उड़ाना। उनकी पतंगे काले रंग की हुआ करती थी। हवा में उड़ती हुई काली पतंग इस बात का संकेत होती थी कि रफी साहब अपने घर की छत पर पतंग उड़ा रहे हैं। वो अपनी पतंग के लिए मांझा पंजाब से मंगवाया करते थे। पतंग उड़ाने की बात आती थी तो हमेशा मृदुभाषी रहने वाले रफी काफी प्रतिस्पर्धी हो जाया करते थे। उनको किसी से भी अपनी पतंग कटवाना कतई पसंद नहीं था। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनिषा आपके साथ।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ। मोहम्मद रफी साहब के जीवन का एक बड़ा अनोखा पहलू भी हुआ करता था जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता था। मोहम्मद रफी साहब के साथ कई शो करने वाली कृष्णा मुखर्जी बताती है, रफी साहब स्टेज पर जाने से पहले अपना चांदी का कंगा निकालकर अपने गंजे सर पर फेरते थे, शरारती ढंग से मुस्कुराते थे, इसके बाद वो ठंडा दूध का एक गिलास पीते थे। स्टेज पर उनकी ऊर्जा देखने लायक होती थी। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ अपने खाली समय में मोहम्मद रफी, मेहंदी हसन और गुलाम अली के गजलें सुना करते थे। उनके बेटे शाहिद रफी बताते हैं कि रविवार को बच्चों के साथ कैरम और बैडमिंटन खेलना उन्हें काफी पसंद था और उन्हें बॉक्सिंग मैच देखने का भी बहुत शौक था और उनके अब्बा खाने के बेहद शौकीन थे। रफी साहब की बातें अनगिनत हैं। उनकी गायकी के किस्सों पर पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है। आज के लिए सफरनामे में इतना ही, फिर आपसे मिलूंगी 89.6 DSFM पे। मैं तनीषा,
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS।

0: नया दिन बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हूँ आरजे खुशी। कभी ना कभी किसी ना किसी से आपने सुना होगा कि खुश रहने के लिए केवल पैसा, अच्छे रिश्ते, नाम हो जाना ही काफी नहीं है। अब अगर ये काफी नहीं है तो फिर क्या काफी है? हमारे शास्त्रों से हमें पता चलता है कि हम लोग ये शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, और आत्मा आध्यात्मिक होती है। उसे भौतिक चीजों में ज्यादा खुशी नहीं मिलती, इसलिए अंदर से खुश होना चाहते हैं, अंदर से खुद को संतुष्ट रखना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें किसी ना किसी आध्यात्मिक शिक्षा से जुड़ना होगा। और उसकी शुरुआत हम नाम जप से कर सकते हैं, या फिर हम हरि कथा सुनने से कर सकते हैं। इससे आप देखेंगे कि आपको अंदर से खुशी मिलने लगेगी। मैं हूँ आरजी खुशी, लौट कर आती हूँ थोड़ी ही देर में।
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: हेलो, वेलकम बैक टू द शो। मैं हूँ आरजे खुशी। सुबह सुबह मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रगल होता है कपड़े ढूंढने में कि मुझे आज क्या पहनकर जाना है, क्योंकि देखो लड़कों के लिए तो बहुत आसान है, एक जीन्स हो गई, एक पैंट हो गई, टी शर्ट हो गई, शर्ट हो गई और जैकेट हो गई। लेकिन लड़कियों के इतने सारे कपड़े होते हैं और हर सीजन में एक नया फैशन। बाकी सभी लड़कियों को बताना चाहूंगी कि इस सीजन में बहुत ज्यादा ट्रेंड में है शर्ट्स। अगर आपके पास में शर्ट है तो प्लीज पहनना शुरू कर दे, साथ में उसे पेयर करें वी नेक स्वेटर्स के साथ में। लॉन्ग ओवरकोट है तो बहुत अच्छी बात है, और हुडी तो हमेशा ही ट्रेंड में रहती है। जीन्स के बजाय हम लोग जॉगर्स भी खरीद सकते हैं। ये सारी चीजें आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी जो आपके फैशन गेम को थोड़ा सा अप कर देंगी। लौट कर आती हूँ थोड़ी देर में। मैं हूँ आरजे खुशी।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: पिछले कुछ सालों की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी है कि कपड़े ना बहुत अफोर्डेबल हो गए। मैं हूँ आरजे खुशी। जैसे कि आज हम लोगों ने बात की है फैशन की, तो लड़कियों को इन सर्दियों में कैसे अपना फैशन गेम अप करना चाहिए, इस बारे में हम बात कर चुके हैं। लेकिन अगर हम ऐसा कुछ भी खरीदना चाहते हैं जो महिलाएं भी यूज कर पाएं और पुरुष भी यूज कर पाएं, तो एक ऐसी चीज है जो हम खरीद सकते हैं। खादी के जितने भी कोट होते हैं ना, वो कोई भी पहन सकता है। वो साड़ी पे भी अच्छे लगते हैं, तो वो पैंट पे भी अच्छे लगते हैं। वो लेडीज सूट्स के साथ में भी पहन सकती है, तो पुरुष अपने कुर्ते पजामे के साथ में भी पहन सकते हैं। तो अगली बार कोई खादी वाली शॉप आप देखें या ऑनलाइन शॉप करें, तो खादी का एक कोट जरूर ले लीजिएगा। घर में सब जने पहन पाएंगे उसको। मिलूंगी कल आपको इसी पते पर, इसी समय। मैं हूँ आरजे खुशी।

90 दिन यार, 90 डेज कैसे? ट्यून इन कर रखा आपने 89.6 और रेडियो डीएस। और कई बार मैं देखता हूँ कि जो जुड़वे होते हैं ना, उनमें डिफरेंस ज्यादा नहीं होते, कोई 2 मिनट पहले पैदा होता है, कोई 2 मिनट बाद होता है, वो आपस में भैया दीदी कह के बुलाते हैं। पर ये ऐसे ट्विंस है जो 30 मार्च 1996 में पैदा हुए थे और दोनों ट्विंस के बीच 90 डेज का फर्क है, 90 दिन। अब आपके मन में कई सवाल आ रहे होंगे जिनके जवाब तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि आपका काम सवाल करना नहीं, सिर्फ सुनना है। क्या गाने 89.6 रेडियो डीएस पे।

तभी तभी मैं अपने टाई को ना बिल्कुल ऐसे नीचे पहनता था, पेट तक टाई आ जाती थी, पर मेरे पीटी सर दे पिटाई करते मेरे। ट्यून इन कर रखा आपने 89.6 डीएस। और एक भैया रियल वाली बात है, मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर्स का कहना है कि जो टाई हम पहनते हैं और अगर टाई बहुत टाइट हो तो हमारे ब्लड फ्लो, ब्रेन तक जो ब्लड जाता है उसके फ्लो में 7.5% तक की कमी आ जाती है। इसीलिए टाई जब भी पहनो, लूज पहनो, लेकिन गाने जब भी सुनो शानदार सुनो। कहाँ सुनोगे? यही सुनोगे और कहीं नहीं, रेडियो डीएस 89.6 पे। 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। सर

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: नहीं नहीं नहीं, आपको ये बात भी पता नहीं था, लेकिन आज का शो यही तक था। फिलहाल टाइम टू गो। जाने से पहले मैं आपको बता के जाऊंगा, ट्यून इन कर रखा आपने 89.6 रेडियो डीएस। और हमारे शरीर में सबसे जो छोटी हड्डी होती है वो कहाँ है, बताओ बताओ बताओ? हमारे कानों के पीछे, हमारे कान में, उसको कहते हैं हम स्टेपल्स बोन। और अगर ये हड्डी टूट जाए या कुछ भी डैमेज हो जाए तो भैया सुनने में दिक्कतें होती है, पर फिलहाल ऐसी कोई भी दिक्कत ना हो भैया, क्योंकि अमेजिंग गाने आने वाले जिसको सुन के आप बोलोगे आहा मजे आ गए। कहाँ पे? 89.6 रेडियो डीएस पे।

0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: आए, ठहरे और रवाना हो गए। जिंदगी क्या है, सफर की बात है। हैदर अली जाफरी के इस शेर के साथ मैं तनीषा 89.6 डीएस एफएम पर आपके फेवरेट सेगमेंट सफरनामे में आपका स्वागत करती हूँ।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ। आज की हमारी फिल्म है जब प्यार किसी से होता है। सन 1998 में रिलीज हुई इस फिल्म को सलमान की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक माना जाता है। फिल्म में सलमान खान ने मासूम, गुड लुकिंग और आकर्षक दिखने वाला एक युवा सूरज का किरदार निभाया है। सूरज को प्यार का असली मतलब तब समझ में आता है जब वो कोमल नाम की लड़की को अपना दिल दे बैठता है। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ। सफरनामे में आज की आखिरी फिल्म है अंदाज अपना अपना। ये एक बहुत ही कॉमेडी मूवी थी। ये फिल्म 1994 में रिलीज हुई। फिल्म में आमिर खान, सलमान खान, करिश्मा कपूर और रवीना टंडन जैसे मुख्य कलाकार नजर आए थे। इस फिल्म को राजकुमार संतोषी ने निर्देशित किया था। ये एक हिट फिल्म साबित हुई। फिल्म के दौरान आप अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे। जब भी आप देखोगे, पहले सीन से लेकर आखिरी सीन तक आपकी हंसी नहीं रुकेगी। आमिर खान, सलमान खान शानदार है और उनकी कॉमिक टाइमिंग भी शानदार है। और परेश रावल का क्या कहना, वो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। इस फिल्म का संगीत आपको पुराने दिनों की याद जरूर दिलाएगा। आज के लिए इतना ही। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: शोला शोला।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
2: गंगापुर सिटी की धरतर।
3: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
2: गंगापुर सिटी की धरतर।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस।
4: तेरी याद सताए तो हम खाते जाएं, तेरे सिवा शाम बता हम कहाँ जाएं।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस
0: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
2: गंगापुर सिटी की धरतर।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस।
4: हाँ जी, खाटू जाने वाले सभी श्याम प्रेमी हैं, लेकिन कुछ उनमें बाबा के लाडले हो जाते हैं। यह भजन उन लाडले भक्तों के लिए। जय श्री

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS
0: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6।
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6378024475। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: बेरंग सी दुनिया में जब रंग बहता है शाम का प्रेमी सारी दुनिया से बस यही कहता है।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
2: गंगापुर सिटी की धरती।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस।

दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6378024475। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो DS
0: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो DS
2: बस मजा चाहिए गाना
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो DS

यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: सकता है।
1: गंगापुर सिटी की धरकर
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस
2: पसंद मचना चाहिए
3: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरतर
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: मैजिक रेडियो
1: DS 89.6
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डी।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरतर रेडियो DS
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: person.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो डीएस
1: 89.6
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरतर रेडियो डीएस
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

अरिजीत सिंह की आवाज में आपने गाना सुना लुट पुटे गया फ्रॉम द फिल्म डंकी। और एक अमेजिंग फैक्ट बताता हूँ कि चांद आपने देखा है, चांद गोल होता है, लेकिन फैक्ट यही है कि चांद और धरती का रोटेशन इतना सिंक्रोनाइज्ड होता है कि बचपन से

0: फॉगी फॉगी मौसम है भैया, धुंध है, धुंध है, ओसी ओसी। और इस वक्त गंगापुर सिटी में मैं अगर तापमान की बात, वेदर की बात, टेम्परेचर की बात ना ही करूं तो बेहतर है। तो किसकी बात करूं, बात करूंगा इस वक्त गाने की। मैं खिलाड़ी गाना सुना आपने उदित नारायण की आवाज में, अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में। लिरिक्स लिखा है माया गोविंद ने, कॉम्पोजिशन अनु मलिक ने, लेकिन इस गाने को रिक्रिएट किया तनिष्क बागची ने। और ठंड बहुत है भैया, बातें कम करूंगा, गाने सुनाऊंगा अगले 3 बैक टू बैक गाने सिर्फ आपके लिए।
1: गंगापुर सिटी की धरती।

0: specific person. Radio DS.
1: जल्दी लेट हो गए, ले भाई चाबी।
2: सर, ऑन स्टेज 5 मिनट्स।
1: ओके, तुम्हारी मैं जा रहा हूँ। लगता रूम में रह गया।

0: देखो, एक होता है सही समय, एक होता है गलत समय, और एक हो रहा है अभी का समय जो 9:15 से ऊपर है या नीचे मैं नहीं बताऊंगा, खुद से अपनी घड़ी चेक करो। इससे पहले आपने गाना सुना क्या लोगे तुम, बीपराग की आवाज में। लिरिक्स लिखा था जानी ने और कॉम्पोजिशन भी जानी ने, लेकिन बीपराग। जब फिल्म एनिमल का ट्रेलर आया था तो उसमें एक बहुत ही शानदार सीन था जहाँ पे रणबीर कपूर और अनिल कपूर वो एक्ट कर रहे होते, जहाँ रणबीर कपूर कहते कि मैं आपकी एक्टिंग करूंगा, आप पापा हो मेरे, और फिर वो डायलॉग आता है सुनाई दे रहा है बहरा नहीं हूं मैं। तो जब भी मैं बीपराग के गाने सुनता हूँ मेरे को वो सीन याद आता है कि सुनाई दे रहा है। इसी बात पे चलो तीन गाने बैक टू बैक आपके लिए।
1: गंगापुर सिटी की धरती।

0: जस्मीन नौटियाल असीस कौर की आवाज में आपने गाना सुना राता लंबिया। लिरिक्स और कॉम्पोजिशन तनिष बागची भैया ने लिखा है। वैसे हाँ फिलहाल मेरा समय हो चुका है जाने का, टाइम टू गो। कल मिलेंगे सुबह 9 से 10, पर आप कहीं मत जाओ, बने रहो हमारे साथ, गाने सुनो 89.6 रेडियो DSP
1: गंगापुर सिटी की धरती रेडियो DS।

0: कह दूं तुम्हें
1: हाँ
0: या चुप रहूं
1: ना
0: दिल में मेरे आज क्या है
1: क्या है

0: 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ। आज सफरनामा में मैं आपको हिट फिल्म्स की दिलचस्प बातें बताऊंगी। अगर आप बॉलीवुड फैन भी हैं, तो भी आपने इन बातों पे कभी गौर नहीं किया होगा। चलिए लौट के आऊंगी और बताऊंगी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा।
1: गंगापुर सिटी की धरती
2: तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

कराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

0: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो 89.6
1: DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ। एक बात बताओ, आप आंखें झपकाए बिना रह सकते हो क्या? नहीं ना। लेकिन एक गौर करने वाली बात यह है कि पी के फिल्म में, जो मेरी सबसे फेवरेट फिल्म है, उसमें आमिर खान ने आंखें बिल्कुल भी नहीं झपकाई है। विश्वास नहीं है, वापस जाके देखो। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ।
0: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो।

0: पांच बजे के घर पर रेडियो डियर्स।
1: बॉलीवुड फैंस के लिए एक इंटरेस्टिंग बात, सिलसिला एक ऐसी अकेली मूवी है जिसमें शशि कपूर ने अमिताभ बच्चन के बड़े भाई का रोल निभाया है। बाकी जितनी भी इनकी फिल्म्स हैं जिसमें ये सिबलिंग बने हैं, सभी में अमिताभ बच्चन वो हैं जिन्होंने बड़े भाई का रोल निभाया है। चलिए सुनते हैं ऐसी ही कुछ फिल्म्स के खूबसूरत गीत। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ।
0: गंगापुर सिटी की धरती पर

0: जाने भी दो।
1: क्यों भूखे हो तुम?
0: नहीं भूखे,
1: हमें खाओगे?
0: नहीं खाएंगे।
1: तो फिर भागो।

0: गंगापुर स्थिति की धरतर
1: तेरे वास्ते, तेरे वास्ते गाना सुना आपने वरुण जैन, शादाब अल्तमाश की आवाज में, सचिन जिगर की आवाज में, लिरिक्स लिखा अमिताभ भट्टाचार्य ने, कॉम्पोजिशन सचिन जिगर ने किया। और सर्दियों वाली मॉर्निंग यानी विंटर मॉर्निंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जो इससे पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। ध्यान से सुनना कि विंटर मॉर्निंग बहुत ही ज्यादा कोल्ड और बहुत ही ज्यादा फॉगी रहता है, जिससे बचने का सिर्फ एक उपाय है, वो है गर्म कपड़े पहनना, वुलन कपड़े पहनना। और कई बार जब हम ऐसे मुंह खोल के बाहर सांस छोड़ते तो हमें फॉग नजर आता है। आपको नहीं पता था ना, झूठ मत बोला, आपको नहीं पता था। ऐसे ही और बचकाने फैक्ट के साथ, इम्पोर्टेंट विंटर फैक्ट के साथ मैं वापस आऊंगा, लेकिन बैक टू बैक पहले तीन गाने आपके लिए।

0: अपना स्थिति की धरकर
1: देखो, अगर आपके गले में खराश है तो मेरे साथ रिपीट करो। चलो 1 2 3। नहीं नहीं, ये पार्ट आपको नहीं करना है। अर्जुन वेली गाना सुना आपने, फ्रॉम द फिल्म एनिमल, संग बाय बब्बल। बब्बल बब्बल जी ने बहुत ही प्यारा गाना गाया, भूपेंद्र बब्बल जी ने। लेकिन उससे भी प्यारा मैं एक स्पॉइलर तो है ही नहीं भैया। गंगापुर सिटी में अगर किसी ने, एक बंदे ने भी फिल्म देख ली, मतलब पूरे शहर ने भैया फिल्म देख लिया। और फिल्म एनिमल भैया 1,000 करोड़ के इतने करीब। बस मुझे यही फैक्ट बताना था, कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, फिलहाल आपका टाइम भी बर्बाद नहीं करूंगा। चलो अमेजिंग गाने बजा रहा हूं मैं आपके लिए, 4 गाने बैक टू बैक।

0: सुजानापुर स्थिति की धरकर
1: देखो आप सज धज के ऑफिस के लिए निकल चुके हो, सलाम है आपको, लेकिन मेरे लिए साल का सबसे मुश्किल समय क्योंकि मौत आ जाती है इस फैसले को करने में कि आज नहाऊं या नहीं नहाऊं। अरिजीत सिंह की आवाज में आपने गाना सुना है, लिरिक्स लिखा अमिताभ भट्टाचार्य ने, कॉम्पोजिशन सचिन जिगर ने किया, गाने का नाम था फिर और क्या चाहिए। चाय चाहिए गर्मा गर्म, लेकिन इस वक्त चाय लेने तो मैं जा रहा हूँ, पर आप कहीं मत जाना, चार गाने आपके लिए बैक टू बैक।
0: गंगापुर स्थिति की धरकर Radio DS.

हेलो दोस्तों, आपने ट्यून किया 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का में आपका रेडियो दोस्त आकाश। और अब करते हैं कार्यक्रम का समापन और मिलते हैं सुबह प्रातः 5:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।